सुनिए न करे ऐसे खिट पिट।

Here we go. Hit. After hit. After hit. This is SBS South Asian.

बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कमबख्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: From life's strongest relationships to the hardest goodbyes, SBS Audio has podcasts that get real.
4: Comedian Lizzie Hu explores the lasting impact of grandparents on our lives in grand gestures.
3: Check out Grave Matters with Anthony Levin and Nadine J. Cohen for a look at death, grief, and the business of dying.
4: Follow on your favorite podcast app or listen now on the SBS Audio app or sbs.com.au/audio.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. आज के शो की पहली रिपोर्ट है फेडरल बजट को लेकर, जहां आर्थिक अस्थिरता के बीच सरकार के फैसलों से महंगाई, टैक्सेस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर नज़र रहेगी. उसके बाद बात होगी NDIS सिस्टम में बड़े बदलावों की, जहाँ फ्रॉड एक बहुत बड़ी चिंता बनकर आया है और सरकार और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कह रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद मेलबर्न में लिटिल इंडिया को विकसित करने की पहल पर एक रिपोर्ट, जिसमें हमने कुछ कम्युनिटी लीडर्स से भी बात की. और अंत में एक इंस्पायरिंग कहानी बेंगलुरु के सौरभ कुमार की, जिन्होंने पॉट होल्स यानी गड्ढों की समस्या से शुरुआत करके सस्टेनेबल और अब कार्बन नेगेटिव रोड्स बनाने का भी सफ़र तय किया है. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, लेकिन सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इस शो की न्यूज़ फ्लैश के साथ. मंगलवार 5 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी तट के पास हुए बोट हादसे में मारे गए 3 लोगों की पहचान हो गई है. इनमें 2 मेरीन वॉलंटियर्स और 1 व्यक्ति शामिल है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे. मरीन रेस्क्यू न्यू साउथ वेल्स ने बताया कि बेलेना बार पर एक यॉट के संकट में होने की सूचना मिलने पर 6 लोगों की वॉलंटियर टीम भेजी गई थी, लेकिन समुद्र की स्थिति बहुत खराब थी. करीब 2.5 मीटर ऊंची लहरें और तेज हवाओं के कारण उनकी रेस्क्यू बोट पलट गई. टीम के 4 सदस्य सुरक्षित किनारे पर वापस आ गए हैं. NDIS मिनिस्टर मार्क बटलर ने कहा है कि इंडिजिनस लाभार्थियों को NDIS से हटाने से पहले कल्चरल सेफ्टी पर काम किया जा रहा है, जो प्रोग्राम की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए किए गए रिफॉर्म मेजर्स का हिस्सा है. फर्स्ट पीपल्स डिसेबिलिटी नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है कि उनकी जगह कल्चरली सेफ और उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए. इन बदलावों के तहत लगभग 1,60,000 लोग इस प्रोग्राम से हटाए जा सकते हैं, जिससे खर्च की बढ़ती गति को रोका जा सके. मार्क बटलर ने SBS को बताया कि एक एडवाइजरी ग्रुप बनाई जाएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि फर्स्ट नेशन स्ट्रैटेजी को सही तरीके से लागू किया जाए. एक लग्जरी क्रूज शिप पर सवार 149 लोगों में से 4 ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं, जहां एक खतरनाक वायरस का आउटब्रेक सामने आया है. केप वर्ड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण फिलहाल इस शिप को पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जहाज को तट के पास खुले समुद्र में ही रोका गया है. पश्चिम अफ्रीका के पास संदिग्ध आउटब्रेक में अब तक हैंटा वायरस के 7 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में एक डच दंपति और एक जर्मन नागरिक शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ के एसोसिएट प्रोफेसर स्टीवन ब्रैडफूड ने कहा है कि इस मामले को लेकर कई सवाल हैं जिनकी जांच की जरूरत होगी. ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लोगों को 2023 तक के 5 वर्षों में सुपर एनुएशन पेमेंट्स में करीब $25 बिलियन कम भुगतान मिला है. सुपर मेंबर्स काउंसिल के विश्लेषण के अनुसार लगभग 1/4 वर्कर्स इससे प्रभावित हुए हैं. न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया है, जो $8.1 बिलियन है. वहीं नॉर्दर्न टेरिटरी में प्रति वर्कर औसतन $2,140 का सबसे अधिक सालाना कम भुगतान पाया गया है. इसके बाद ACT और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का स्थान है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक शिप के कैप्टन ने कहा है कि इस क्षेत्र में मर्चेंट शिप्स पर नए हमलों की खबरें काफी चिंताजनक हैं. US मिलिट्री के अनुसार उसने 6 ईरानियन छोटे बोट्स को डुबो दिया जो कमर्शियल शिपिंग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे. ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान की गई. ईरान ने इन रिपोर्टों को खारिज किया है. शिप कैप्टन रमन कपूर ने स्काई न्यूज को बताया कि जिस वेसल पर वो हैं, वो ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकी हुई है. उन्होंने कहा कि अनिश्चितता के कारण उनके क्रू का मोराल फिर से प्रभावित हो रहा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहे हमले दिखाते हैं कि इस संकट का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने यूएस नेवल ऑपरेशन को, जो मर्चेंट और ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट डेड लॉक कहा, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहते हैं। और अब खबर भारत से। कल आए चुनावी नतीजों में देश के कई राज्यों की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बहुमत सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में बढ़त हासिल की। वहीं आसाम तथा पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत दर्ज की, जबकि तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली TVK पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखे। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है SBS हिंदी पर। और एक खबर जो आज दोपहर में आई है वो है RBA की तरफ से। RBA यानी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक नकद दर यानी कैश रेट को 4.1% से बढ़ाकर 4.35% कर दिया है, यानी इसमें 0.25% अंकों की वृद्धि की गई है। ये रिजर्व बैंक द्वारा इस साल की तीसरी लगातार बढ़ोतरी है, जिससे नकद दर फिर से 2024 के स्तर पर पहुंच गई है और पिछले 3 ब्याज दर कटौतियों से हुई बचत लगभग अब खत्म हो गई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मार्च में महंगाई बढ़कर 4.6% हो गई, जो 2023 के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। ट्रेजरर जिम चामर्स का कहना है कि ये वृद्धि मुख्य रूप से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से जुड़े ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण हुई है। तो जाहिर सी बात है ये कई लोगों को असर करेगा। और इसी बीच कुछ ही दिनों में फेडरल बजट भी आने वाला है। हमारी जो अगली यानी पहली रिपोर्ट है वो इसी पे है। हमारे फेडरल बजट से जुड़ी रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा और टैक्स से जुड़े फैसले कैसे प्रभावित होंगे। आइए इन्हीं सभी पहलुओं को समझते हैं इस रिपोर्ट में, जो है अपकमिंग बजट, फेडरल बजट 2026 से जुड़ी। फेडरल ट्रेजरर जिम चामर्स ने वादा किया है कि वो अब तक का सबसे जिम्मेदार बजट पेश करेंगे, जिसमें हर पोर्टफोलियो में बचत की उम्मीद की जा सकती है। नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन टैक्स में संभावित बदलावों का बचाव करते हुए सरकार का कहना है कि ये बजट ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद अनिश्चित हालात के अनुसार खुद को ढालने पर केंद्रित है। SBS हिंदी पर मैं हूँ नबील हसन।
3: This will be a really responsible budget focused on resilience and reform. There'll be a productivity package, there'll be a tax reform package, and there'll also be a very substantial savings package as well.
2: मध्य पूर्व में युद्ध से बड़ी महंगाई और कॉमोडिटीज की कीमतों के चलते आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद के बीच ट्रेजरर जिम चामर्स का कहना है कि जो भी अतिरिक्त आय होगी उसे बचाया जाएगा।
3: We will save more than we spend. And we will bank the upward revisions to revenue as well. We did this in December in the mid-year update, and we will do it again in May. I understand and I appreciate that there is a lot of interest in tax reform in this budget. That's welcome from my point of view. What you will see in the budget is in gross terms, there will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform.
2: टैक्स में और कटौती की अटकलों को लेकर जिम चामर्स ने कहा कि पहले से ही कानून के तहत 1 जुलाई से हर हफ्ते $5 की इनकम टैक्स कटौती लागू है और अगले वर्ष इसमें $5 और की बढ़ोतरी होगी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में बोलते हुए शैडो ट्रेजरर टिम विल्सन ने कहा कि सरकार की ये टैक्स कटौती ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को हल करने से काफी दूर है।
4: Those tax cuts didn't even come close to returning bracket creep. By the time of the December budget update last year, just 7 months after the last federal election, the tax cuts Labor took to the last election had already been wiped out by the Treasurer's active inflation agenda. That's why over their time in government, the Albanese government is the highest taxing government in Australian history, and why personal income taxes in particular are at the highest level as a share of the economy ever.
2: नेगेटिव गियरिंग में बदलाव से इनकार करने वाले चुनावी वादों के बावजूद जिम चामर्स ने कहा कि बजट इंटरजेनरेशनल दबावों पर ध्यान देगा। बजट से पहले चल रही चर्चाओं में कैपिटल गेन टैक्स और नेगेटिव गियरिंग में संभावित बदलावों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसे बदलावों पर यूटर्न लेने से क्या मतदाताओं का भरोसा टूट सकता है, तो ट्रेजरर ने कहा कि सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अपने हालात के अनुसार फैसले लेगी।
3: Yeah, our responsibility is to calibrate the budget to the conditions, to understand and respond to the very real pressures that people are under now and in intergenerational terms as well. And you build trust by taking the right decisions for the right reasons and explaining if you've come to a different view over time, being upfront and explaining why that has been the case.
2: इंटरजेनरेशनल दबावों को एजेंडा में रखते हुए फैमिली ट्रस्ट से होने वाले वितरण पर लगने वाले टैक्स में संभावित बढ़ोतरी को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। सेवन सनराइज से बात करते हुए वन नेशन एमपी बार्नबी जॉयस ने कहा कि ये कदम उन लोगों को गलत तरीके से प्रभावित करेगा जिन्होंने लंबे समय से निवेश किया है।
5: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people who come after them. And what's happening now is Uncle Jim has run out of money, he's desperately looking for it, so he's going to the prudent people and ripping it off them.
2: टिम विल्सन ने कहा कि स्टेज थ्री टैक्स कटौती को लेकर वादे तोड़ने के बाद सरकार ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खोती जा रही है।
4: Jim Chalmers is now actively telling us he needs to break trust, to build trust, so that he can target trusts. The economic follow-through is real. Last financial year, 8 businesses collapsed every business hour. It is clear the Treasurer has lost control of the economy. Policy is heading in one direction, the Reserve Bank in the other, and Australians are being caught in between.
2: National Disability Insurance Scheme, यानी NDIS और Private Health Insurance Rebates में कटौती के साथ वित्त मंत्री केटी ग्लेहर ने कहा कि हर पोर्टफोलियो में बचत के लिए कदम उठाए गए हैं।
6: The budget will also include $2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property, hospitality across the APS. And it'll also have significant savings from unallocated funding across a number of departments. It will also include reprioritisation within defence, which the DPM has taken you through, and also an effort around reducing fraud and non-compliance across MBS and PBS. And so just, I guess the message I'm saying there is, and I've been asked this in the last few days, is there will be savings across every portfolio. We've looked everywhere for savings.
2: महंगाई कम करने से जुड़े उपायों पर ट्रेजरर ने कहा कि बजट में जून के बाद फ्यूल एक्साइज कटौती को बढ़ाने का कोई फैसला शामिल नहीं होगा। उन्होंने इन कटौतियों को अस्थाई बताते हुए कहा कि भविष्य में कॉस्ट ऑफ लिविंग से जुड़े उपायों के लिए कई विकल्प तैयार रखे गए हैं। मुख्य बजट से अलग उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक संभावित नकारात्मक आर्थिक स्थिति पर भी अपनी टिप्पणी देगी।
3: Well, obviously, we've got a whole range of contingencies and we need to be prepared for any scenario, including a downside scenario. I think in response to Leah's question before, you know, we made it clear that we will sketch out for Australians what that downside scenario could look like. And clearly, if the economy deteriorates quicker and worse than what we're anticipating in the budget, of course, we will consider our options at that point.
2: SBS न्यूज के सिडनी लैंग की ये रिपोर्ट SBS हिंदी पर आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. हमारे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको हमारे ये ऑडियो कार्यक्रम पसंद आए हैं और आप ये पॉडकास्ट एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर लाइक और फॉलो करिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आज शो का जो सवाल है वो आपसे पूछ लेता हूँ. आज बात करते हैं बचपन की. हम इस एरा में हैं, इस डिजिटल एरा में हैं जहाँ हम हर वक्त हर पल इतना सारा कंटेंट देख रहे हैं, रील्स के ज़रिए, टीवी शोज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, सीरीज़, मूवीज़, न जाने क्या क्या. लेकिन बचपन का वो वक्त था जब शायद पूरा परिवार एक साथ बैठ के अपने फेवरेट सीरियल या कार्टून या कुछ ना कुछ देखता था. आपके बचपन का वो कौन सा यादगार शो है जो आपको बहुत पसंद था? और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ. मैं अपने फैमिली के साथ, हमें बड़ा मज़ा आता था जब पूरा परिवार बैठ के हम पांच नाम का एक सीरियल देखता था. शायद आपको याद होगा, हम पांच में एक फैमिली थी जिसमें पांच बेटियाँ थीं और बहुत ही मज़ेदार ये शो था. और आई थिंक जितना मुझे अगर सही से याद है वो आधे घंटे का एक शो होता था और बहुत ही शानदार उसमें सिंपल सादी कॉमेडी होती थी और पूरा परिवार देखता था. तो 04397997667 पर बताइए कि आपका वो कौन सा शो था जो आप परिवार के साथ देखते थे या आप खुद देखते थे, अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ देखते थे, यादगार वो कौन सा शो था. 04397997667 हमारा नंबर है. आगे बढ़ेंगे लेकिन लेंगे एक एड ब्रेक और जब तक आपके मैसेजेस आते हैं हम आपसे फिर से मिलेंगे. अपना नाम ज़रूर भेजिएगा अपने मैसेज के साथ. सुनते रहिए SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील.
7: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get four mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: No, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: You know the feeling. That rush when you reach that goal. Make somebody brag a little back home. That's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making. And nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील. और आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज आया है. कमल जी सिडनी से लिखते हैं, जय श्री कृष्णा, एन्जॉइंग द शो. बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का. और आप लोग भी अगर कुछ भी संदेश भेजना चाहते हैं तो 04397997667 हमारा नंबर है. एरबिक से पहले मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि चलिए आज हम बचपन की तरफ चलते हैं और उस शो को याद करते हैं जो हम अपने परिवार के साथ मिलकर सब लोग देखते थे. और एक ऐसा ही शो जो हम लोग देखते थे, जो मैं देखता था, वो था हम पाँच. एक बड़ा ही मज़ेदार फैमिली कॉमेडी वाला शो था और मुझे आज भी उसके एपिसोड जो अगर दिख जाए तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आपका वो कौन सा पसंदीदा शो था 0439-799-767 पर हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट है NDIS से जुड़ी। हाल ही में फेडरल सरकार ने NDIS व्यवस्था में बड़े बदलावों की घोषणा की है। $50 बिलियन की इस व्यवस्था में धोखाधड़ी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है और ऐसे में क्या कहना है सरकार का और क्या चाहते हैं वो NDIS सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर से, आइए जानते हैं वैशाली जैन की इस रिपोर्ट में।
8: फेडरल सरकार ने $50 अरब के नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसका मकसद धोखाधड़ी और बढ़ते खर्च को कम करना है। हालांकि विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों और समर्थकों ने कुछ सुधारों का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सहायता में कटौती और पात्रता के नियमों को लेकर अभी भी और स्पष्टता की आवश्यकता है। उन्हें चिंता है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है वे कहीं जरूरी सेवाओं से वंचित ना रह जाएं। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने इन सुधारों को कठिन लेकिन जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि पात्रता को सख्त करना, वित्तीय सहायता में कमी लाना और गलत तरीके से काम करने वाले प्रदाताओं पर कार्यवाही करना ताकि इस $50 अरब की योजना के खर्च को नियंत्रित किया जा सके अब आवश्यक है। मंत्री के अनुसार इन बदलावों पर ही इस योजना का भविष्य निर्भर है।
14: Right now the NDIS costs too much and it's growing too fast, put alongside any comparable government program. And unless we take action to make it sustainable, it simply will not be there in the future for the Australians who need it most. We can't afford for the NDIS to continue growing at its present rate, but far more importantly, we can't afford for the NDIS to fail.
8: साल 2013 में शुरू की गई नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम का मकसद शुरू में लगभग 4 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सहायता देना था और इसकी सालाना लागत करीब $13.5 अरब आंकी गई थी, लेकिन अब इस योजना में करीब 7.6 लाख लोग शामिल हैं और इसका खर्च बढ़कर सालाना $50 अरब तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर के अनुसार सरकार पात्रता के नियम सख्त कर इस दशक के अंत तक लाभार्थियों की संख्या घटाकर 6 लाख तक लाना चाहती है। सरकार का कहना है कि बढ़ते खर्च की एक बड़ी वजह है इस योजना में फैली धोखाधड़ी। ऑस्ट्रेलिया भर में लगभग 2,80,000 NDIS सेवा प्रदाता हैं, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य ना होने के कारण केवल करीब 6% ही आधिकारिक रूप से पंजीकृत है और नियामकों की निगरानी में आते हैं।
14: Access will be based upon a significant reduction in a person's functional capacity that impacts their day-to-day living. It will also remove the use of the lists that currently decide a participant's eligibility based on diagnosis alone. These so-called access lists were put in place to get the scheme up and running, but they were always supposed to make way for an objective assessment tool. Instead, the diagnosis gateway has funneled people onto a scheme that was never designed for them.
8: हिना सिन्हा चुंग करीब 2019 से एक NDIS प्रदाता हैं। इससे पहले भी वे NDIS के क्षेत्र में काम करती रही हैं। SBS हिंदी से बात करते समय उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से सरकार के प्रस्तावित जो बदलाव हैं, वो क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
15: सो विशाली, मैंने इस ओवरऑल को काफी क्लोजली स्टडी किया है और मैं समझ पा रही हूँ कि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि हम इस सिस्टम को हम सस्टेनेबल बना सकें और ये जरूरी भी है। पर एक प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा एक जो डर या फियर जो है प्रोवाइडर्स के माइंड में, वो ये है कि हम कंप्लायंस और रेगुलेशंस के चक्कर में जो रियल केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भूल ना जाएं। जब हम पेपर वर्क में दब जाते हैं तो उसका सीधा असर पार्टिसिपेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। तो इसीलिए जब हमने एक रीसेंट बुक रिलीज की थी फ्यूचर प्रूफिंग योर सिल बिजनेस, जो बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ लिखी गई थी, उसमें यही हमने रियलाइज किया था कि ऑटोमेशन आज के टाइम में कोई लग्जरी नहीं है। और इसीलिए अगर एज केयर और एनडीआईएस प्रोवाइडर्स जो हैं आज के डेट में अगर वो पुराने तरीकों से अपना कंप्लायंस और रेगुलेशन हैंडल कर रहे हैं तो वो आने वाले कुछ सालों में अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम बेंचमार्क जो देख रहे हैं इंडस्ट्री में एनडीआईएस प्रोवाइडर्स का प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 2% है। तो अगर हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से और ओवरहेड कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली वो बिजनेसेस वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो उसका मतलब यही होगा कि हम पेपर वर्क और रेगुलेशन के चक्कर में जो एक्चुअल केयर है उसको ही भूल रहे हैं। तो मैं समझ पा रही हूँ कि गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी के पर्पस की वजह से ये ओवरहॉल कर रही है, पर एज अ प्रोवाइडर आई ऑल्सो थिंक कि जो प्रोवाइडर्स हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं

0: SBS South Asian.
1: Your news from here.
0: And hits from home.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Government koi outcomes achieve kar payegi, nahi providers. So number one is clarity. We need more clarity. Kab, kaise, kya changes lai jayengi. Aur dusri cheez ye, ki इन चेंजेस को अफेक्ट होने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स को चाहिए क्या वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है या फिर वो सिर्फ स्कीम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स हैं वो कैसे कंटिन्यू कर सकेंगे अपना केयर.
6: खैर अभी तो इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम है. किस तरीके की तैयारी आप सोच रही हैं कि एज अ प्रोवाइडर आप करेंगी ताकि जब ये बदलाव आए तो आप उसके लिए तैयार हों?
5: तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना पिछले 1.5 साल से चालू कर दिया है और आई एम आल्सो को-फाउंडर ऑफ सिंपल एआई. अब सिंपल एआई इज एक्चुअली हेल्पिंग जो भी एनडीआईएस और एज केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको उनके जो ओपेक्स चार्जेस है जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं एक होते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं जिनको आप कम नहीं कर सकते हैं. पर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उन ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकेंगे तो हम प्रोवाइडर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए एक एटलीस्ट फेयर प्लेइंग ग्राउंड बना सकेंगे ताकि वो अपने बिजनेस और केयर को सस्टेन कर सके. सो हम अपने बिजनेस में ऑलरेडी ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं जो रिपीटेड एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो ऑपरेशनल रिपीटेशनल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए और आगे फ्यूचर में वही बिजनेसेस सस्टेन कर पाएंगी जो टेक यूज कर रही है उन चीजों के लिए जहां पे वो नॉर्मली दे वुड बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज अल्टीमेटली ओपेक्स के जो कॉस्ट होते हैं वो आपके प्रॉफिट मार्जिन से रिड्यूस होते हैं. श्रेशाली मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी बिजनेस ओनर्स हैं जो बाकी प्रोवाइडर्स हैं जो सही चीज कर रहे हैं उनके पास वो टूल्स रहे उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम रहे ताकि वो अपने जो इंटेंशन के साथ उन्होंने बिजनेस चालू किया है जो लोगों की केयर करना है उनको वो कंटिन्यू कर पाए. मेरी यही उम्मीद है कि मेरे जवाबों को सुन के शायद वो सॉल्यूशंस ढूंढ पाए जिससे वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए और जिसकी वजह से जो लोग हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज वो उनको वो चॉइस हमेशा रहे कि वो चूज कर पाए कि उन्हें किन के साथ काम करना है.
6: हालांकि विकलांगता क्षेत्र के संगठनों द्वारा स्वागत किए गए एक कदम में इन सुधारों के लागू होने की समय सीमा अब अप्रैल 2027 तक बढ़ा दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि आने वाले महीनों में राज्य और क्षेत्रों समुदायों और सलाहकार समूहों के साथ व्यापक परामर्श किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनडीआईएस को बजट में शामिल किया जाएगा लेकिन ये सिर्फ बजट का मामला नहीं है ये हमारे राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र को दर्शाता है. ये केवल विकलांग लोगों के लिए एक सहायता का साधन नहीं बल्कि गर्व का विषय भी है लेकिन हर बार जब कोई गलत प्रदाता इस सिस्टम का दुरुपयोग करता है तो ये भरोसा कमजोर हो जाता है. एज्ड केयर पर अधिक जानकारी के लिए एज्ड केयर एडवोकेसी लाइन को 1800-700-600 पर फोन करें या फिर opan.org.au पर जाएं. इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है. SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत. आपके लिए इस खबर को SBS न्यूज से सिडनी लैंग और SBS हिंदी से वैशाली जैन ने प्रस्तुत किया.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.

0: make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: You know the feeling. That rush when you reach that goal. Make somebody brag a little back home. That's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
4: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे Facebook पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी Facebook पर भी है.
5: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील और एक सवाल हमने पूछा था कि आपके बचपन का वो कौन सा शो है जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते थे और बड़ा मज़ा आता था क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई याद ऐसी जुड़ी हुई है जब वो फैमिली के साथ कुछ ना कुछ शो देखते थे. हमारे पास दो तीन मैसेजेस आए हैं. कैलाश जी ब्रिस्बेन से लिखते हैं कि शक्तिमान ये एक शो था जो वो देखते थे और जाहिर सी बात है इसके बहुत फैंस हैं. और राजेंद्र वोरा जी हैं क्रेगी बर्न से, वो लिखते हैं कि हम सर्कस देखते थे. और एक और मैसेज आया है जो बड़ा ही अलग है जफर जी का. वो लिखते हैं, वो उन्होंने बात की है एक ऑस्ट्रेलियन शो की, स्किपी द बुश कैंगरू. वो कहते हैं कि हम सब मिलके देखते थे और इसके लिए पूरा हफ्ता इंतज़ार होता था. तो मुझे लगता है इस शो के बारे में जो लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं हैं या जिनके बचपन भारत में गुजरा शायद ना पता हो, लेकिन ये वो शोज़ हैं जो हर देश की तरह हर किसी के पास अपना एक शो होता है और ये भी शायद इंटरेस्टिंग हो देखने में, स्किपी द बुश कैंगरू. आप भी अपना मैसेज भेजिए 04397997667 पर अपने नाम के साथ और बताइए वो कौन सा शो था जो आप बचपन में फैमिली के साथ देखते थे और उससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं. आगे बढ़ेंगे और अब हमारी अगली रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट है लिटिल इंडिया से जुड़ी. मेलबर्न में लिटिल इंडिया के नाम से अब तक कोई आधिकारिक स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, हालांकि कई वर्ष से डैंडेनोंग में इस नाम से एक इलाका जाना जाता रहा है. अब शहर के केंद्र में लिटिल इंडिया विकसित करने की पहल सिटी ऑफ मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निक रेकी ने की है, जिसके लिए $1.2 मिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा हुई है. क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नताशा कॉल की. और आपके SMS का मैं शायद नंबर बताना भूल गया, 04397997667 हमारा नंबर है, 04397997667. चलिए अब सुन लेते हैं नताशा कॉल की मेलबर्न में विकसित होने वाले लिटिल इंडिया की रिपोर्ट.
6: नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से. श्रोताओं, हम सभी मेलबर्न में डैंडेनोंग के उस लिटिल इंडिया को जानते हैं जो अपनी मेहनत और पहचान से खुद ब खुद बस गया था, लेकिन अब एक नया मोड़ आ रहा है. डॉकलैंड्स में एक आधिकारिक लिटिल इंडिया तैयार होने जा रहा है, जिसके लिए मेलबर्न काउंसिल ने $1.2 मिलियन की रकम घोषित की है. और ये तब हुआ जब सिटी ऑफ मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निक रीस ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि लिटिल इंडिया का प्रोजेक्ट मेलबर्न के डॉकलैंड्स क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. मेलबर्न में पहले से ही चाइना टाउन, कोरिया टाउन मौजूद हैं, लेकिन लिटिल इंडिया जैसा कोई क्षेत्र अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है. ये तब और अहम हो जाता है जब ग्रेटर मेलबर्न में भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है. तो जैसा कि हमने बताया, इस योजना के तहत लिटिल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए $1.2 मिलियन के निवेश की बात कही गई है. हालांकि जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. जहां कई लोगों ने इसका समर्थन किया है, वहीं कुछ ने इसका विरोध भी जताया है. अब इस प्रोजेक्ट के समर्थन में एक पिटिशन शुरू की गई है जिसका उद्देश्य समर्थकों को एकजुट करना और इस पहल को आगे बढ़ाकर साकार करना है। इस अंश में हम जुड़ रहे हैं सिटी ऑफ मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निक रीस से जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: Yes, well, Melbourne is, of course, Australia's Indian capital. We have the biggest Indian community of any city in the nation. Melbourne is also the most successful multicultural city in the world. And we are really confident that people will embrace Little India in the same way they have embraced Chinatown, Koreatown, Little Italy on Lygon Street and the Greek precinct on Lonsdale Street. In some ways, I'm surprised that it's taken Melbourne this long to come up with the Little India idea. But I can tell you, I'm very proud to be the Lord Mayor who's going to deliver on it.
6: So, आखिर Docklands क्यों चुना गया? निक रीस बताते हैं कि Docklands में कई ऐसे भारतीय व्यवसाय हैं जो स्थान को Little India के रूप में दर्शा सकते हैं।
1: We have a really vibrant Indian community in Docklands already. Many thousands of people of Indian cultural background living there. Docklands is also a gateway to the western suburbs of Melbourne. And so, you know, we have a very large Indian community living in the western suburbs. And so that Docklands location fits well there. And, you know, Little India is a chance to celebrate the cultural and economic contribution that our Indian community makes across Greater Melbourne, but at the moment there is nowhere central where that community and all their family, friends, allies, and the broader Melbourne population can come together and celebrate those big days on the Indian calendar. And so I think Docklands is the perfect location. I was in Docklands last week for our draft budget community consultations, and I spoke to quite a few members of the Indian community about what they think of the idea, and it was palpable, the strength of support there. And indeed, as I move around Melbourne, I often have members of the Indian community come up and say hello and have a bit of a chat, and they, everybody knows about the Little India idea, and they're really strongly supportive.
6: निक रीस का कहना है कि लिटिल इंडिया को Docklands क्षेत्र में लाने का विचार उसे मेलबर्न के सेंट्रल पॉइंट पर लाने का है।
1: Look, I think Little India in Dandenong is a great spot in Melbourne. I've visited it many times myself over the years. But without wanting to talk down our friends in Dandenong, it's a little bit off Broadway, as they okay. say. You know, I think that we need to have a Little India that is in a central location right. for Melbourne right. in Docklands. There are actually quite a few, in fact, a large number.
6: Right.
1: And so at the moment, we are actually going literally street by street around Docklands, trying to work out where best to focus the Little India precinct. But I do want to assure you that there are actually a large number of Indian restaurants and supermarkets and cafes and businesses that are already located in Docklands. And in fact, there's even some giant corporations who have Indian background, like Infosys, right. for example, right. who are headquartered in Docklands. And they have thousands of people that they employ there.
6: Yeah.
1: Then you've got other companies like ANZ, an Australian company. But ANZ has many thousands of people who now work in India, and indeed many people who are of Indian background mm-hmm. who work for them. So there's lots of examples like that,
6: right.
1: which mean when you put it all together, I think there is a strong ecosystem to support a Little India.
6: लेकिन Little India खबर बाहर आने के बाद ऑनलाइन विरोध शुरू हो गया है। जब हमने लॉर्ड मेयर निक रीस से उनकी प्रतिक्रिया पूछी, उन्होंने कहा,
1: Oh, look, I was a little bit dismayed to see some of the comments that people made about the Little India concept. But look, I'm not completely naive about these things either. It's certainly something that I, and look, some of them had a bit of a racist overtone to them. I absolutely reject those comments wholeheartedly, and they absolutely do not define who we are as Melbourne and Melburnians. And so we will just keep moving forward.
6: तो इस विरोध के बाद नकारात्मक टिप्पणियों को रोकने और समुदाय को एक साथ लाने के लिए एक याचिका भी शुरू कर दी गई है। पेटिशनर वासन श्रीनिवासन हमें बताते हैं।
7: सो जो अभी लॉर्ड मेयर और डिप्टी लॉर्ड मेयर ने ये प्रोग्राम शुरू किया, मैं उनका साथ चल रहा हूँ इसको बनाने के लिए सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड में अपना लिटिल इंडिया प्रेसिंग आने में बहुत खुश है हमारा कम्युनिटी के लिए। हमारा कम्युनिटी इतना है अभी, इसमें से ज्यादा लोग आगे नहीं आते हैं। मैं इसलिए सबको रिक्वेस्ट किया, जो भी निगेटिविटी चल रहा है वो एंटी माइग्रेशन का, वो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो माइनॉरिटी लोग है, हम क्लोजर टू 1 मिलियन लोग है यहाँ अभी। हम अभी अच्छा मौका है हमारा एक लिटिल इंडिया प्रेसिंग वर्ल्ड लिवेबल सिटी में मेलबर्न में आ रहा है, हम लोग सब साथ में उसको सपोर्ट करके बनाने का।
6: लिटिल इंडिया को समर्थन देने के लिए वासन श्रीनिवासन समुदाय को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं।
7: कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है भाई बहन, ये हमारा मौका है। एक कंट्री में आके हम लोग अभी इतना सेटल किया, इतना काम किया, इतना मेहनत किया, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको छोड़ के जाने का है। ये छोड़ने के लिए एक तो मौका अभी मिला है मेलबर्न सिटी के अंदर एक इंडियन प्रीसिंक्ट बनाने का है। प्लीज सब लोग साथ में आओ, यूनाइट करके हम इसको बना के दिखाएंगे। ये साउथ आओ, लिटिल इंडिया और ब्रिकवर्क से बड़ा मेलबर्न में हम बना सकते हैं। हम लोग ने इतना टेम्पल बनाया, इतना गुरुद्वारा बनाया, इतना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हम लोग साथ में एक तो बना सकते हैं। दैट्स अ चैलेंज फॉर अस।
6: जब हमने लॉर्ड मेयर से इस पिटिशन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा,
1: Oh, look, I say all strength to their arm. I am very determined, Natasha, to deliver on this project. And I think it's, and I know in my bones that it's going to be so successful, in the same way as Chinatown has been a great feature for Melbourne, Koreatown as well. In fact, this I think will be even more so because of the scale, the passion and the energy of our Indian community in Melbourne.
6: आपको बता दें 2023 में सिडनी के हैरिस पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिटिल इंडिया का उद्घाटन प्रवासी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। तो क्या मेलबर्न के लिटिल इंडिया का उद्घाटन भी वैसा ही होगा? निक्रीस बताते हैं।
1: Well, Natasha, I cannot say too much on this front because I don't believe we even have official confirmation yet of a Modi visit. But if it was to occur, then of course here in Melbourne we would be insisting that the Indian Prime Minister come here. We are, after all, the Indian capital of Australia in Melbourne. And if the Prime Minister of India was to visit Melbourne, then wouldn't it be wonderful if he was to come to Docklands and maybe we made some big announcements about the future of Little India in this city.
6: Filhal, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लिटिल इंडिया को आधिकारिक रूप से घोषित किए जाने की पूरी तैयारी सिटी ऑफ मेलबर्न में चल रही है।
8: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
9: One more, let's go.
8: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
11: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
12: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
9: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
5: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और हम शो के आखिरी 15 मिनट में पहुंच गए हैं, जिसमें एक रिपोर्ट बची है और फिर कुछ गाने। हमने आपसे उससे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि आपके बचपन का वो कौन सा शो है जो आप सब लोग पूरे फैमिली के साथ मिलकर देखते थे, और हमारे पास कई मैसेजेस आए। किसी ने लिखा शक्तिमान, किसी ने सर्कस, किसी ने एक ऑस्ट्रेलियन शो की भी बात करी कि स्किपी द बुश कैंगरू, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो वो हम देखते थे। और ज़फ़र जी ने मैसेज किया है कि थैंक यू फॉर रीडिंग माय मैसेज, हम आपके मैसेज ज़रूर पढ़ेंगे। आप भी अपना संदेश भेजिए 0439799767 पर और अपना नाम ज़रूर लिख के भेजिएगा। चलिए एक आखिरी रिपोर्ट फैसल फरीद की अब पेश करते हैं, भारत से एक प्रेरणादायक कहानी। बेंगलुरु के इंजीनियर सौरभ कुमार की ये कहानी है, जिन्होंने सड़कों पर गड्ढों की समस्या को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उसे ठीक करने का काम भी शुरू किया। उन्होंने हज़ारों पॉट होल्स भरकर सड़क सुरक्षा बेहतर करने की कोशिश की और आगे चलकर अपनी नौकरी छोड़कर ऐसा स्टार्टअप बनाया जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से टिकाऊ और कम प्रदूषण वाली सड़कें बनाता है। आज वो कार्बन नेगेटिव रोड्स पर भी काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं यह आखिरी रिपोर्ट आज के शो की।
13: सड़कों पर पॉट होल्स या गड्ढे देखकर आम इंसान सिर्फ किसी न किसी पर दोषारोपण करके निकल जाता है। इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं और लोग घायल हो जाते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार 4 सालों यानी 2020 से 24 के बीच में 9438 लोग पॉट होल्स के कारण हुई दुर्घटना में जान से हाथ धो बैठे हैं। बेंगलोर में सौरभ कुमार एक इंजीनियर हैं, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ी। उन्होंने सिर्फ शिकायत करने का काम नहीं किया बल्कि इसका निदान करने की सोची और 10 सालों में लगभग 35,000 पॉट होल्स को भरकर ठीक किया कि दोबारा कोई दुर्घटना ना हो। ये सब कार्य उन्होंने अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़कर किया। ये एक बड़ी सोच थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कुछ ऐसी सड़कें बनाई जाएं जो टिकाऊ, सस्ती और प्रदूषण भी ना हो। इसके लिए उन्होंने पहले प्लास्टिक मैट्स का प्रयोग किया और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया जिसमें वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाते हैं। ये सड़कें टिकाऊ रहती हैं और प्रदूषण भी कम करती हैं। सौरभ अब कार्बन नेगेटिव रोड भी बना रहे हैं। सौरभ बताते हैं।
14: तो मैं बेसिकली झारखंड रांची से आता हूँ, मेरी परवरिश वहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं 2010 में बैंगलोर आया अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने SIT तुमकुर एक नाम के एक कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से। उसके बाद फिर मेरी पहली जॉब ट्यूलेट पैकेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर का मेरा जॉब था, जहाँ पे मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद मैंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की थी जो एक सोशल एंटरप्राइज था, जिसका नाम पॉटहोल राजा था, जहाँ पे हम सड़क में पॉटहोल फिक्स करते थे, जिसमें मैंने कुल मिला के करीब करीब 35,000 से ज़्यादा पोर्टल फिक्स किए उस समय। और फिर अभी मैं अपनी दूसरी कंपनी मैंने स्टार्ट करी जिसका नाम एकोपथ। बेसिकली एजुकेशन वाइज मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपनी MBA की डिग्री भी की हुई है जो SPJN मुंबई से मैंने लिया है, और साथ ही साथ मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता भी हूँ। कुआ में एक इंस्टीट्यूट है IICSR, तो मैं एक एजुकेटर भी हूँ।
13: शुरुआत हमेशा छोटी होती है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री और अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने ये सब किया। स्वयं जाकर सड़क के गड्ढे भरना कोई आसान काम नहीं है। सौरभ को ये गड्ढे भरने का आइडिया भी अखबार में पढ़कर आया था।
14: ये वो जो आइडिया मुझे आया था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के, जहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल डेथ की खबर थी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है जनरली। तो वहाँ वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 2016 की बात है, आज से ठीक 10 साल पहले की बात है। तो वहाँ के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वो नागरिक नहीं बनना चाहता जो सिर्फ एक कंप्लेन करने का हक रखता है। मैं वो बनना चाहता हूँ जो सोल्यूशन माइंडसेट के साथ आता है। तो उसी के बाद ही मैंने फिर अपनी जॉब छोड़ी और फिर स्टार्ट किया था वो करना, जिसको मैंने करीब 6 साल तक
15: मैंने चलाया, और इंस्पिरेशन आपदा के कारण ही आई थी, जो एक जो नहीं होना चाहिए हमारे देश में या फिर किसी भी देश में अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं भी नहीं ये होना चाहिए कि किसी को भी एक पॉटहोल के कारण उसकी मृत्यु हो जाए या उसके हाथ पैर टूटे, उसके उनके परिवार को कष्ट हो, ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने वही सोचा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको लेके चला जाए, तो तब मैंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो मेरी पहली इनिशिएटिव थी।
16: अब सौरभ इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़कें बनाते हैं, कहाँ से वो वेस्ट लाते हैं, ये क्या होता है और कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे अब सौरभ अपने इस मॉडल को बेंगलोर के बाहर भी ले जाने का विचार कर रहे हैं। कई जगह पर इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कुछ जगह पर बात चल रही है। इनका अनोखा मॉडल सभी को पसंद आ रहा है।
14: देखिए, वो एक कॉन्सेप्ट था जो बेसिकली वेस्ट तो मैं यूज करता था उस समय भी, वो एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैं लाना चाहता था कि जिससे और बेहतर कंस्ट्रक्शन करी जाए, जिसको ही फिर आगे चल के मैंने मॉडिफाई किया अपने नई कंपनी इकोपथ में, कि आप वैसे वेस्ट के साथ काम कीजिए जिसकी अवेलेबिलिटी अबंडेंस में है, और जिसके कारण आप ऐसी सड़कें बना सकें जो टूटे नहीं, जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बेसिकली आपको हर तरीके से अडॉप्शन के लिए आसानी हो जाए। तो हम एक्चुअली प्लास्टिक तो नहीं यूज़ करते अब फिलहाल, बट हम इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज करते हैं। बेसिकली जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है जिसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, जो स्टील प्लांट से वेस्ट निकलता है जिसको स्लैग बोलते हैं, तो हम इन दोनों वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज करके और हम बेसिकली सड़कों का निर्माण करते हैं। सड़क में जितने भी मटेरियल लगते हैं, जैसे हमारे डिवाइडर्स हो गए, कर्व स्टोन हो गए, बाउंड्री वॉल्स हो गए, बेसिकली जहाँ भी सीमेंट जाता है, तो हमने सीमेंट का एक ऑल्टरनेट मटेरियल बना दिया है जिससे अभी हम सड़कों का निर्माण करते हैं, विथ एन एश्योरेंस गारंटी कि ये सड़क, हमारी बनाई हुई सड़क जो है वो टूटेगी नहीं। तो हम सब कुछ फैक्ट्री में बना के और सीधा इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इकोपथ जो है अभी फिलहाल बैंगलोर में एग्जिस्ट करती है। बैंगलोर में काफ़ी हमने काम किया हुआ है, जितने बड़े बड़े रियल स्टेट डेवलपर्स हैं, कुछ पब्लिक रोड के फुटपाथ्स वगैरह हो गए बनाने का काम से लेके हमारे देश की जो अभी फिलहाल जो पॉलिसी है नेट जीरो क्लाइमेट, जो हमने अभी एक गोल सेटअप किया है 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करने का, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करना, तो हमारा एम यही है कि हम भारत के इस एम्बिशियस गोल में 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे तरफ से अगर हो पाए तो हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा अगला जो एक्सपेंशन का जो टारगेट है, वो अभी हम बहुत जल्दी पुणे, मुंबई और हैदराबाद में हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश के कोने कोने में जाए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे करके हमारा अभी एक्सपेंशन स्टार्ट होगा।
16: सड़क के गड्ढों को भरने से एक आइडिया आता है और फिर उसको धरातल पर उतारने से सुंदर सड़क बन जाती है। सौरभ ने वो कर दिखाया है। लखनऊ से फैसल फरीद।
5: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील, और अब शो के बस आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं जिनमें हम आपके लिए गाने प्ले करते हैं, और उससे पहले एक आखिरी मैसेज भी पढ़ देते हैं। आज हमने पूछा था कि आपके बचपन का वो कौन सा शो है जो आप पूरे परिवार के साथ देखते थे और बड़ा मज़ा आता था, और कई मैसेजेस आए। एक आखिरी मैसेज जो आया है वो है चेतन शाह जी का, सिडनी से। वो लिखते हैं कि आर फेवरेट शो वॉज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये एक बड़ा अच्छा कॉमेडी शो था और हाईली पॉपुलर इन गुजराती हाउस होल्ड। मुझे लगता है सिर्फ गुजराती हाउस होल्ड ही नहीं बल्कि भारत में कई इसके फैंस हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज मैसेज भेजने के लिए। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगा एक नए शो में, कल शाम में एक बार फिर 5 बजे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा, और बने रहिए SBS हिंदी के साथ। एक आखिरी दो गाने आपके लिए प्ले करूँगा। ये गाना आने वाला है ओ रोमियो फिल्म से, जो बड़ा मशहूर हो रहा है, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

The Bollywood Session on SBS South Asian.

0: SBS South Asian.
1: जे तू मेरा दिल तोड़िया
2: है या कश्चन टू ऑन द बीच
1: दिल

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: SBS South Asian, your news from here and hits from home.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे।
1: But I want you to stay,
0: cause I want you to stay, cause I want you to stay.

0: SBS South Asian or anytime on the SBS Audio app.
1: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो?
2: कुछ भी करा रहा हूँ, हमसे कहना, यहाँ के डाउन है।

0: Your music playlist sorted. SBS South Asian.
1: Yo, lavish.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

नेचुरल

किया कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रातां में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ।

ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।